नमः। ओम श्री साई अपांतरात्मने नमः। ओम श्री साई अवतार मूर्तये नमः। ओम श्री साई सर्वभय निवारिणे नमः।

नमः। ओम श्री साई आनंददाय नमः। ओम श्री साई आर्तत्राण परायणाय नमः। ओम श्री साई अनाथनाथाय नमः। ओम श्री साई असहाय सहाय

नमः। ॐ श्री साई कनकांबर धारिणे नमः। ॐ श्री साई अद्भुतचर्याय नमः।

थैंक यू फॉर द वॉर्म वेलकम एंड मैं और मेरी पूरी टीम की तरफ से सबसे पहले तो हमारे पास जो भी है थोड़ा बहुत वो संगीत ही है और हम स्वामी के चरणों में अर्पित करते हैं। आशा करते हैं स्वामी को और आप सबको पसंद आएगा। बहुत ज्यादा लर्नेड नहीं है, सीखा बहुत ज्यादा नहीं है, पर जो भी थोड़ा बहुत है मेरे पास मैं कोशिश करूंगा कि बेहतर से बेहतर आज कर पाऊं। आप सबका सहयोग चाहिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।

हमको नाम संकीर्तन बहुत अच्छे लगे। मैंने अभी कुछ ही दिनों पहले जिंदगी में पहली बार नाम संकीर्तन सुने और मुझे पर्सनली इतने पसंद आए कि हमारे बैंड ने बहुत सारे नाम संकीर्तन तैयार किए, और वो इसलिए तैयार किए कि हमें मालूम है यहां सब लोगों को नाम संकीर्तन आते हैं तो वो साथ में गा सकते हैं, तो अगर सारे लोग साथ में गाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा और साथ ही साथ हमें बड़ी खुशी होगी, हमें ऐसा लगेगा कि एक्सेप्टेंस है। तो अगर आप सब साथ दें तो बहुत खुशी होगी। थैंक यू।